जैसे जल में है कमल निरालम, मुर्गाई नैसाण सुरत शब्द भव सागर तरिय नानक नाम वखाण थिर कर बैसह हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसेआए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों हुन चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास

0: डरे
1: साजना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभ दर्श पियासा
1: नानक तांगे मल मल जासा
0: सजन पुरख में

0: छोड़ छूट संग मचे,
1: जो छड़ना सो अस्तर कर माने,
0: जो होवन सो दूर पराने,
1: छोड़ जाए तिसका श्रम करे,
0: संग सहाय तिस पर हरे,
1: चंदन ले पुतारे धोए,
0: गर्दा प्रीत पसम संग होए,
1: अंध कूप में पतित बिकराल,
0: नाने कालो प्रभु दयाल,
1: करतूत पशु की मानस जात,
0: लोक पजारा करे दिन रात,
1: बाहर पे अंतर मल माया,
0: छप छनाए

0: बाहर सहले
1: अज्ञानी मनोरोष करे
0: अपनी प्रतिताप ही खोवे
1: और भरोसा का विश्वास न होवे
0: जिसकी वस्तु तिसे आगे रखे।

0: कथा विहाय
1: मेज बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन विरते सब काम
1: यो कृपा के अर्थ दाम
0: तान तांते जन जे कट वस्यो हर
1: नानक के बल बल जाओ
0: रहत अवर कछ अवर को महापत
1: मन प्रीत मुखो कंडलावत
0: जानन हार प्रभु परवीन
1: बार पेख न काम पीन
0: जैसे आप न करे
1: आवत जावत जन में मरे
0: के अंतर वसे निरंकार
1: जिसकी सीख दरे संसार
0: तुम पाने तीन प्रभु जाता
1: नानक कुंजन चरण प्राता
0: बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आप पे माने
0: आप करतन वेरा
1: किसे दूध नावत किसे जावत नेरा
0: ज्ञानप सकल ते रहत
1: सबके जाने आत्म की रहत
0: स्वावेत से ले लड़ लाए
1: थांख न

0: साधके संगमुख उज्जल होत साधके संग मिटे अभिमान साधके संग बूझे प्रभ नेरा साधके संग पाए नाम रतन साधकी महिमा बरने कौन परानी साधके संग अगोचर मिले साधके संग आवे बस पंचा साध संग होए सब की रेन साधके संग ना कतू तावे साधके संग माया ते पिन साध संग दुश्मन सब मीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध के संग नाही को मंदा
1: संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नाही ओ ताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कबू तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस गोचर ले
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़े सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु कै कुर्बान
0: साध के साथ सब कुल उधारे
1: साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे
0: साधु के संग सोतन पावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप लायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कच काल
1: दर्शन पेट ते होत निहाल
0: साध के संग कलुकत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग यहाँ सोहेला
1: साध संग विशरत हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग ना बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: नानक उतरे साध सुन रस
0: साध के संग सुनो हर नाम
2: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग ना मानते बिसरे
2: साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रम मीठा
2: साधु के संग कड़का डिठा
0: साध संग पे आज्ञाकारी
2: साध संग गत पै
0: साध के संग मिटे सब रोग
2: साध मिटे संजोग
0: साध की महिमा वेद न जाने
2: जिनता सुने ते तब ज्ञाने
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर
2: साध की उपमा रही प्रभु
0: साध की शोभा का नाही अंत
2: साध की शोभा सदा व्यान
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची
2: साध की शोभा मूंचते मूंची।

0: पत्री
1: जैसे जल में कमल लेप
2: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष
1: जैसे सूर सर्प को शोक
2: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राजना को लागे तुल
2: ब्रह्म ज्ञानी के तीर देख
1: ज्यों सुधा को खोदे को चंदन लेप
2: ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाओ
1: नानक
0: जो पावक का सहज स्वभाव
2: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैं न लागे जला
2: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तारु
0: प्रकाश
2: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अपमान
2: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
1: माने अपने सब ते नीचा
2: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नानक जिन प्रभाव करे
2: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह
2: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी के
2: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि अमृतवासी
2: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी के

0: महा
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सुपला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम दार
2: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सा सजागत
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुसह निवास ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श वट भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर
1: ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए
1: ज्ञानी के सगल मन माए।

0: खाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का संगले कार।

मिथ्या नाही रसना परस पार्थिव रूप न पेखे नेत्र करण न सुनय काहु की निंदा गुर प्रसाद भिख्या पर हर इंद्री जित पन दोखते रहत वैष्णो सो जी सुपर सुपर सन कर्म करत हो वहने कर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछ मंथन अंतर सिमरन गोपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे भगवती भगन भगत का रंग मनते बिनसे सगला परम सात संग पापा मल खोवे भगवंत की टहल कर नित नीत हर के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम सारस पीवे हर की कथा हृदय बसावे वेद पुराण सिमरत बुझे मूल चौवर्ना को दे उपदेश बीज मंत्र सर्प को ज्ञान जो जो जपे तिसकी गत होए कर कृपा अंतर उतार सर्व रोग का उखद नाम काहू जुगत कित ना पाइए तरम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास आत्म राम तिस नदरी आया सदा निक

प्रज्ञातम हितावै तैसा हरक तैसा उस सोग तैसा सुवरन तैसी उस माटी तैसा मान तैसा अभिमान जो वर्ताए साई जुगत पार ब्रह्म के सगले ठाओ आपे करन करावन जोग पसरियो आप हो या न तरंग जैसी मध्य तैसा परगास

0: रचना प्रभ रची गोविंद अनेक प्रकार अष्टपदी
1: नौमा नंबर
0: कई कोटाचार व्यवहारी
1: मेरा तेरवा नंबर
0: कई कोट ब्रह्म में उदासी
2: कई कोट वेद के श्रोते
0: कई कोट तपिसर होते
2: कई कोट आत्म ध्यान तारे
0: कई कोट कप का विचार है
2: कई कोट भक्त नाम त्यावे
0: नानक करते का अंत न पावे
2: कई कोट पय अभिमानी
0: कई कोट अंध ज्ञानी
2: कई कोट कृपण कठोर
0: कई कोट अभिघातम निकोर
2: कई कोट पर दर्प करे
0: कई कोट पर दुख ना करे
2: कई कोट माया शर्म आए
0: कई कोट पर देश प्रमाए
2: जित जित लाभो तित तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
2: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राज रस भोगी
2: कई कोट पंखी सर्पो पाए
0: कई कोट पाथर ब्रख में जाए
2: कई कोट पवन पानी वह संत
0: कई कोट देश भू मंडल
2: कई कोट शशि और सून खतर
0: कई कोट देव दाना इंद्र से छतर
2: सकल समग्री अपने सूत तार
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
2: कई कोट राजस्थान सात
0: कई कोट वेद पुराण सिमरतन सासत
2: कई कोट किए

0: कईकोट भूत प्रेत सुकर मिलगाच
1: सबते नेरे सब होते दूर
0: नानक कापल पतरेहा परपूर
1: कईकोट पाताल के वासी
0: कईकोट नरक सुरंग निवासी
1: कईकोट जन्म जीवे मरे
0: कईकोट बो जोनी फिरे
1: कईकोट बैठ थी खाए
0: कईकोट काले थक पाए
1: कईकोट किए तन बांधे
0: कईकोट

0: ज्योतिष पावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए तब किछ दे,
0: ज्योतिष पावे सोई करे,
1: अनजानत बिकिया मेरे चे,
0: जे जानता अपना बचे,
1: पर मैं पूला तैतिस्तावे,
0: निमक में चार कुम फिरावे,
1: कार कृपा जिस अपनी।

0: करे बख्शी
1: ताका लेखन गणे जगदीश
0: जियो पिंड सब तिसकी रास
1: घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश
0: अपनी बणत्या बनाई
1: नानक जीवे।

0: बिकरार
1: कबू सरब की हो तरवाल
0: कबू ओए बै पड़ राजा
1: कबू भिखारी नीच का साजा
0: कबू आपकी रत में आवे
1: कबू पला।

0: जी कबू
1: कबू की ठस पतंग में जिया अनेक जोन पर में परमिया
0: जो प्रभा जो तिस पावे सोई होए
2: आवर न कोए
0: कबू सात संग ते पावे
1: उस स्थान ते बार न आवे
0: अंतर होए ज्ञान पर गास
1: उस स्थान का

0: संत के दुख तेज सब जाए,
1: संत के दुख नीच न जाए,
0: संत दो की कथा को नाहे,
1: नानक संत पावे ता होई विगत पाए,
0: संत का निंदक महात ताई,
1: संत का निंदक केंटे गन न पाई,
0: संत का निंदक महा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज ते हीना,
1: संत के निंदक दुखिया दीना,
0: संत के निंदक को सर्व रोग।

0: सब प्रसन्न हार
1: पूजा सत सत से वधार नाम सत सत अवन हार
0: सत सत सब तारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: सब सत सत प्रभक्ता
1: सुरत सत सत जा सुनता
0: गुजन हर को सत सब होए
1: नानक सत सत प्रभु सोए
0: सस रूप हृदय जिन मानिया
1: कर्ण करावन तिन मूल बुझानिया
0: जान के हृदय विश्वास पर
1: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया जिस ते उपजा तिस माए समाना
0: वस्त मेले वस्त

0: अपने दास को देव डाई,
1: अपने सेव को नाम जपाई,
0: अपने सेव किया पत रखे,
1: ताकि गत में कोई न लाखे,
0: बाकी सेव को न पहुँचे,
1: बाकी सेव को ऊँचते ऊँचे,
0: जो पर अपनी सेवा लाया,
1: नानक सो सेव के दिश प्रकटाया,
0: निकी कीवी में कल रखे,
1: पसम करे लस्कर

0: अनेक प्रवाल कबड़ाने
1: बरम बारंबार बार बार जपिए
0: प्रिय मृदेव माता त्रपिए
1: नाम रतन किन गुरमुख पाया
0: तेज को जवन नाई तेज आया
1: नाम तन नाम रूप रंग
0: नामो सुख नाम का

0: मान संतों का दंपति अमृत दिस पे के हो संत नानक जिस पावे तिस ले खिलाए सतगुर पूरन विवेक अगम गोचर प्राप निर्वाणी कीमत किने न पाई
1: चरण कमल ते सिमरै नानक जिस पर साध सब प्रभ में अमृत पीवे मन सोए जाके मन पटे उतास साचा ते सेवक को दे मन में
0: राखे हर हरेक नानक परम तहते नासे अनंत प्यार दुख न पाए
1: साधु के पूरन रडे से सगल प्यार मन देखे न से साथ समझत नाम मुरारी सुन नानक रज श्रवण कलाधार जिन सगली मोही अपनी कीमत आपे पाए सरम निरंतर एको सोए पै पर गा साध के संग रच रचना अपनी करदारी अनिक गावे नानक।

0: एक सिमर नाम आधार
1: अवरो पास मीत बिसारो
0: चरण कमल में उतारो
1: कारण कारण सो प्रभ सम्राट
0: दृढ़ कर गौ नाम हर वत
1: धन संचो होवत भगवान
0: संत जना का निर्मल मंत सर्व रोग नानक मिट जाए
1: तन को चार कुण उठ तावे
0: सो तन हर सेवा ते पावे
1: सो को नित पाछे मी
0: सो सुख साधु संग पर

सेवकीनो सदा निहाल जन्म मरण दुख भ्रम गया रावरे आसत संग हजूरी नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसर

0: तो किसको गनी,
1: जब भेज गई हर अगम अपार,
0: तब नरक सुर को कौन अवतार,
1: जब निरंग निर्गुण प्रभु से सुभाए,
0: तब शिव सकत को की ठाए,
1: जब आप आप अपनी जोत धरे,
0: तब कवन निडर कवन कत डरे,
1: आपन चलत आप कन्ने हार,
0: नानक ठाकुर अगम अपार,
1: अविनाशी सुख आपने आसन,
0: तय जनम मरण को कहा बिना सुन,
1: जब पूरण करता प्रभु सोए,
0: तब जम की त्रास कहो कि सोए,
1: जब भगत अगोचर प्रवेका,
0: तब चित्र दुपत के तूचर त्रेका,
1: जब नाथ निरंजन को चरगा दे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे,
1: आप यह चर्चा
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा,
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: तय बिन मैं कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: तय कौन को मान कौन अभिमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: तय छल छिद लगत को कीस,
1: जय ज्योत स्वरूप ज्योत संग समावे,
0: तय किसे भूखवन तृप्तावे,
1: करन करावन करने हार,
0: नानक करते का नहीं सुमार,
1: जब अपनी शोभा अपन सग बनाई,
0: तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई,
1: जय सर्व कला आप परवीन,
0: तह देर कदे कह को चीन,
1: जब आपन आप उतारे,
0: तो सगन अब सगन

0: अनेक रंगना ना दृष्टा है
1: भगवंत
2: करन माए आकाश प्याल
1: सर्व लोक पूरन प्रतपाल
2: बंतन पर्वत है।

0: सी मृत में देख
1: ससे असुर नगर में
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आप डोल का बहुडोले
0: सर्व करा कर खेले खेल
1: बोल पाए गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: तारे स्वामी ओत पोत
0: दुख प्रसाद परम का नाश
1: नानक दिन में विश्वास
0: संत ना का पेखन सब ब्रह्म
1: साजना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुनहे सब वचन
1: सर्व व्यापी राम सब रचन
0: जिन जाता तिस किए रहत
2: सत वचन साधु सब कहत
0: जो होए सोई सुख माने
2: कर्ण करावन हार प्रभु जाने
0: अंदर बसे बाहर पियो हे
2: नानक दर्शन देख सब होई
0: आप सत किया सब सत
2: तिस प्रभु ते सगले युत पात।

पाई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चुकै भोग, गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए, जे वड़िया ते वड़ तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात, खसम विसारै है ते कमजात, नानक नावै बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा,

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा, हर त्यावह संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडारना। तू आपे दाता पे भुगता जी, हों तुद बिन।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सभिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोह लेहो उबारे। कबयो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो। हाथ दै मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संगरिय। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद

उपरंत गुर शब्द विचारा हुईया आरती कीर्तन होए गुरमत विचारा हुईया सतगुरु जी नाम सिमरन अभ्यास होए छे पौड़िया आनंद साहब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन दी दात बख्शनी कीर्तन जस बख्शना दाराई संगत नू अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नाम दिया दातां बख्शिश करनिया सतगुरु जी आप जी दे स्थाना ते भाई दर्शन सिंह जी उन्हां वल्लों नाम सिमरन अभ्यास द्वारा हाजरियां भरिया सतगुरु कृपालता करनी मेहरामत करनी सतगुरु जी आप जी दे हजूर सरदार कुलवंत सिंह माता जगदीश कौर तिना दे सपुत्र सतनाम सिंह समूह परिवार वालों आस्ट्रेलिया विच पी आर होने की खुशी नूं मुख रखदिया श्री सुखमनी साहब जी दे पाठ ते लंगर सेवा प्राप्त की सतगुरु जी गुरबाणी पढ़दिया हुई भुलां गलतियां की खिमा बख्शनी लंगर सेवादार प्रवान करनी शुभ मनोभावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां चढ़दियां कला करनियां सतगुरु जी स्वर्गवासी सरदार गुरचरण सिंह जी की बरसी के संबंध में उन्हां दे सपुत्र संतोख सिंह तथा समूह परिवार वल्लों आत्मिक शांति लई अरदास सतगुरु जीओ अरदास बेनती दर प्रवान करनी कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शनी सतगुरु जी ओ परिवारां दा आपसी समेल तालमेल बनाउणा सतगुरु प्रेम इतफाक बख्शो आप जी दे हजूर सतगुरु जी बेनती पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी दा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे

दीनन की प्रतपाल करै नित, संत उबार गनीमन गारै, पच पशु नग नाग निराधप, सर्व समय सबको प्रतपारै, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारै, दीन दयाल दया निद, दोखन देखत है पर दीत ना हारै, दीन दयाल दया निद, दुख

प्रिय अहनेस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जनम मर दुख जाय होवे सिफत खसंदी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाहांद जिस पास बहिठिया सोही सबना सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी

गुर का शब्द मरे पंच तातु पै पार ब्रह्म होवे निर्मला तू पारस जा पेटे गुर पूरा ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नहीं लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सात गुर ते पाया हो बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनू लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने तुच्छ मात सुन सुन व खाने पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन शीतलायना। जहाँ की सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै तां ठंडा थीवै गुरमुखों अलाए तां सोभा पाए ते जम कै पंथ न पायना। संतन की शरणाई पढ़िया जीव प्राण तन आगै तरिया सेवा सुरत न जाना काए तुम करो दया किरमायना। निर्गण को संग लियो रलाए कर कृपा मोटैले लाए पखा फेरू पीसू संत आगे चरण तुहे सुख पायना। बहुत द्वारे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम शरणाया सदा सदा संत सुंग रखो नामदान देवायना। पहे कृपाल गोसाई मेरे दर्शन पाया सतगुरु पूरे सुख सहज सदा नंदा नानक दास दसायना मारू सोले माला।

0: सिमरन दुख जब न सहे,
1: प्रभु के सिमरन काल पर हरे,
0: आपके सिमरन दुश्मन टरे,
1: प्रभु सिमरन किस बिघन न लागे,
0: आपके सिमरन आन दिन जागे,
1: प्रभु के सिमरन भो न व्यापे,
0: आपके सिमरन दुख न संताप,
1: प्रभु का सिमरन साध के संग,
0: सब निदान न नखा रंग,
1: प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध न होने दे,
0: प्रभु के सिमरन ध्यान ध्यान तत् बोध,
1: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा,
0: प्रभु के सिमरन बिन से दूजा,
1: प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी,
0: प्रभु के सिमरन दरगह मानी,
1: प्रभु के सिमरन होए सुफला,
0: प्रभु के सिमरन सफल फला,
1: से सिमरे जनाब सिमराए,
0: नानक ताके लागो पाए,
1: प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा,
0: प्रभु के सिमरन उदरे मूचा,
1: प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे,
0: प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे,
1: प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा,
0: प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा,
1: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए,
0: अमृत नाम निज माए समाए,
1: प्रभु जी बसे साध की रसना,
0: नानक जन का दास दसना,
1: प्रभु को सिमरे से तन वंते,
0: प्रभु को सिमरे से पतवंते,
1: प्रभु को सिमरे से जन प्रमाण,
0: प्रभु को सिमरे से पूर्व प्रधान,
1: प्रभु को सिमरे से बहुमत ताजे,
0: प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे,
1: प्रभु को सिमरे से सुखवासी,
0: प्रभु को सिमरे सदा विनाशी,
1: सिमरन दे लागे जिन आप दयाला,
0: नानक जन की मगर वाला,
1: प्रभु को सिमरे से पर उपकारी,
0: प्रभु को सिमरति सद भले हारी,
1: प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे,
0: प्रभु को सिमरति सुख विहावे,
1: प्रभु को

0: केवल भक्त कीर्तन संग राचे
1: मान तान अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: औरा नाम जपावे
0: नानक को वैष्णव ब्रह्म गत पावे
1: भगत
0: का रंग सगल दे आगे दुष्ट का संग
1: देव से सगला परमा
0: कर पूजा सगल पा।

अनेक जतन कर आत्म निद्रवे आपस को जो भला कहावे सर्व की रे जागा मन होए जब लग जाने मुझते कछ होए।

0: शांति के दुखी को दरगाह मिले सजाए,
1: शांति के दुखी सदा
0: सहकाये, शांति के दुखी न मरे न जीवाये,
1: शांति
0: के दुखी पूजे नासा, शांति के दुखी चले नासा, जैसा भावे तैसा कोई होए,
1: पिया कितना मिटे को
0: नानक गाणी सच्चा सोए,
1: संकट तिसके करने हार

आपण चलता आपी करे आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ अनेक जुगत साप ताप तारण तारे ब्रह्मांड आप जपाए तना

0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के निर्मल अपने सेवक को नाम जपाई
1: सेवक
0: की आप पत्र
1: कोई न लाके
0: आपके सेवक को न पहुँचे
1: आपके सेवक
0: प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक ने जिस प्रकार
0: कदम
1: करे लश्कर कोट
0: लाके जिसका सांस न
1: काटता ताको लाके देख रहा
0: था जन कर पापा
1: जिसके कर्तव्य थे जाते
0: मारे न राके अब न को
1: सर्व यात्रा रखा सोए

सर्वज्ञ सगुण भगी पाय पार्थम की दर्गे गवे मन सुखो मार्गम पत्याने अपने दिस्पे के वो संत नानक जिस पावे तुझे मिलाए सत्पुर पूरण विवेक अगम गोचर प्रभ निर्वाणी ताकि कीमत किने न पाए चरण कमल हृदय सिमरे नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने अमृत पीवे हम सोए जाके मन करते गुणदास सच दे सेवक को दे मन में रखे हर हर एक नानक परम दुखे थे ना से अनंत व्याकुल ना के भाई

0: चरण कमल में उतारो, करण कारण सो प्रभ सम्राट, धन संचो होवो भगवान,
1: सर्व गुणा का निर्मल मंत्र,
0: एक आस राखो मनवाहे,
1: सर्व नानक मिल जाए,
0: जिस तन को चार कुंट उठतावे,
1: सोना सेवा ते पावे,
0: जिस सुख को नित बाचे मीत,
1: सो सुख साधु संग प्रीत,
0: जिस सोभा को पर करे पल करनी,
1: सो सोभा पर की सनी,
0: अनक उपावी रोग न जाए,
1: रोग मिटे हरो कुछ लाए,
0: सरम निदान में हर नाम निदान,
1: जप नान कर गय परवान,
0: मन पर बोधे हर के नाए,
1: जैसे सावत आ बैठाए,
0: लाखो विघ्न न लागे
1: कोई, जाके हृदय सच हसोए,
0: कल ताती ठंडा हर नाम,
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
0: कोविद से पूरण होए आस,
1: भगत भाई आत्म प्रकाश,
0: कर जाए बसे अविनाश,
1: कब नानक काटी जो फांसी,
0: चार कहे जन
1: साचा, जन्म मरण सुखा चोखा चा,
0: आवागमन मिटे प्रभ सेवा,
1: आप प्यास कर गुरुदेव,
0: यो रतन जन्म का होए उतारा,
1: हर हर सिमरन दान उधार,
0: अनक उपाव न छूटन हारे,
1: सिमरन साथ वेद विचारे,
0: हर की भगत करो मन लाए,
1: मन वचन नानक फल पाए,
0: संग न चालस तेरे तना,
1: तू क्या लगता है मूर्ख मना,
0: सुत मीत कुटुंब अरिबंता,
1: इंदे को कौन सनाता,
0: राज रंग माया विस्तार,
1: इंदे को कौन छुटकार,
0: अस हस्ती रथ अस्वारी,
1: झूठा डाक झूठ पासारी,
0: जिन दिए तिस बूझे न बिगाना,
1: नाम सार नानक पछताना,
0: गुर की मत तू ले इयाने,
1: भगत गुना रूप से जाने,
0: हर की भगत करो मन मीत,
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
0: चरण कमल राखो मन माए,
1: जन्म जन्म के दिल बिक जाए,
0: आप जपो अमरा नाम जपावो,
1: सुनत कहे कहत गत पावो,
0: सार पूत सत हर को नाओ,
1: सहस सुनाए नानक गुण गाओ,
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल,
1: बिनत जाए हमें विपैल,
0: कोई अचिन बसे सुखनार,
1: सास रास नाम समार,
0: छाट सानप सगली मना,
1: सास संकावे सच तना,
0: हर पूंजी संच करो बिहार,
1: यहां सुन कर गया जयकार,
0: सरब निरंतर एक को देख,
1: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
0: एक को जब एक को सालाए,
1: एक सुर एक को मनाए,
0: एक के

जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय, जब आपे आप अपनी जोत धरै, आपन चलित आप करणै हार, अविनाशी सुख आपन आसे, जब पूरण करता प्रभ सोए, जब अवगत अगोचर प्रभ एक, जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे, आपन आप ही अचरजा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता।

भगत करे हर के गुण गाए। जिसकी आत्मा बिरती जाए उपकुम्भ पुरमत उठाए। जाके मन बसे निरंकार

गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा ज्ञान भंजन गुरदेव मंत बसोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरदेव मंत निरोधरा।

0: रवयो सामान निरंतर उदारो चित दारि धरन पिकंत है कलमल त्रसन संद सद रंग सहज कलुचर जस जंपो लहणे रसन उदारो चित दारि धरन पिकंत है कलमल त्रसन सद रंग सहज कलुचर जस जंपो लहणे रसन।
1: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नरै बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसै गुरु कै अठसठ ती

0: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊं। शब्द से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक स्यों लिवलाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी। तेही गुणी गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी।
1: जागे जिना मन मसिया बोले अमृत बा।

चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन देहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणिज

प्रिय अहनिस सहज सुभाए दर्शनां परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसंदी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठे सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो जिस पास बहिठिया सोहिया सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी वडहंस महला तीजा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिरकै रंग रती मुइए शोभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइए फिर रावे भाए प्यारे अपने पिरकै रंग रती मुइए

0: विसरे। सोरठ सोरस पीजियै कबहू ना फीका हुए, नानक राम नाम गुण गाइय दरगह निर्मल सुए। जो प्रभ रखे आप तिन कोई ना मारे, अंदर नाम निदान सदा गुण सारे। एका टेक अगम मन तन प्रभ तारे, लगा रंग अपार को ना उतारे। गुरमुख हरे गुण गाए सहज सुख सारे, नानक नाम निदान हृदय उर हरे। करे सो चंगा मन दुई गणत लाहे, अपनी नदर निहाल आपे लहु लाए। जन देहो मती उपदेश विचों परम जाए, जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए। सब कछ तिस दैवस दूजी नाहीं जाए, नानक सुख आनंद पे प्रभ की मन रजाए। गुर पूरा जिन सिमरिया सही पे निहाल, नानक नाम अराधना कारजया वैरास। पापी कर्म कमाम दे कर दे हाए हाए, नानक ज्यों मथन मदानिया त्यों मथे धर्म राए।
1: नाम ते आए नाम जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसी जब है कि तो पवन पनीत। ਉਬੜੀ ਗੁਥਾਏ ਮਿੱਟੀ ਗਲਣ ਗਮੰਤਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ। ਸੁਤੜੇ

सुतड़ी आशंख माया झूठी कारने नानक सी जागन जी रसना नाम उचारने मेरे गौ तिसना पीक भुलने बुठे।

ओंकार सतगुर प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पै अठु नंदन प्रथम राग पैरु वै करही संग रागनी पंच रागनी संग चरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुण्य सलेखी की पई बारी पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दुसाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आला पै संग रागनी पंचो थापै गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासिरी ए पंचो गाई मादरा कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौखट पौरानंद गाए अष्टमाल कौशक संगलाई पुन्यायु हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठै तान कलोल गायन तार मिलाव ही तेलंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई सरस हीरी लै पार जा संगलाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बान ओ आहे विनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन्याई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी अगुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौनाव कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना शामिल श्री राघवे गावे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसा वरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग सो पंचो थापी सालू सारग सागुरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्तम एक राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी उच्चै सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग सु पांचो चीनी बैरा तार गाज तार की दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गा

इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहा जय हर सिमरन पया तय उपाध गत कीनी वर्ण भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पव जल तरना सो कहो टल गुर सेविय एह निस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख होवे सुख सुख सन दी नूर अरसों कुरसों हुन चटिए ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ।